0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান, একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली

0: The joint strategic action plan 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

करने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमही से सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देव किया।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं प्रचरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

0: भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.

0: मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।

0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल लगभग 2200

0: किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा

0: किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑनर ऐप पर भी।

नमस्कार दोस्तों, आकाश में फैली सुबह की उजली किरणों की तरह यदि मन में शांति हो तो पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। मैं हूं आप सबकी साथी ज्योति और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। और आज का हमारा विषय है विश्व शांति और एकरूपता। दुनिया में अलग अलग देश है, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो हर इंसान को जोड़ती है और वो है शांति। जब मन शांत होता है समाज मजबूत होता है और समाज में एकता होती है तभी दुनिया आगे बढ़ती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बातें करेंगे शांति, भाईचारे, मानवता और विश्व एकता की। तो जी दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर तराने से करती हूँ।

तो दोस्तों, विश्व शांति का अर्थ केवल युद्ध का ना होना नहीं है। असली मायने में शांति का मतलब है हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर समाज में समानता हो और हर देश आपसी सहयोग से आगे बढ़े। आज दुनिया विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यदि मनुष्य के भीतर क्रोध, हिंसा और भेदभाव रहेगा तो विकास अधूरा ही माना जाएगा। विश्व शांति का सपना नया नहीं है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, गौतम बुद्ध ने करुणा और प्रेम का संदेश दिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा था सभी धर्म

मानवता की सेवा सिखाते हैं। इन महान विचारों का मूल यही था कि इंसान इंसान से प्रेम करो। तो दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला 9:17 और 55 सेकेंड। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

दोस्तों, अक्सर लोग एक रूपता और एकता को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। एक रूपता का मतलब है समान सोच या समान उद्देश्य, जबकि एकता का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी साथ रहना। भारत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, पहनावे, खान पान और परंपराएं हैं, फिर भी हम सब भारतीय हैं। विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। दुनिया को आज इसी सोच की जरूरत है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब हम शांति की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि अशांति क्यों फैलती है। इसके कई कारण हैं। युद्ध और हथियार की होड़, जातीय भेदभाव, आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट, आज छोटी छोटी गलत फहमियों भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। ऐसे समय में धैर्य, संवाद और समझदारी बहुत आवश्यक हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन भी विश्व शांति के लिए लगातार प्रयास करता है और हर वर्ष इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

दोस्तों, जब भी विश्व शांति की बात होती है तो महात्मा गांधी का नाम अवश्य लिया जाता है। गांधी जी मानते थे कि हिंसा कभी स्थायी समाधान नहीं दे सकती। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आज भी दुनिया के कई नेता और समाजसेवी गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। शांति की शुरुआत घर से होती है। यदि परिवार में प्रेम होगा तो समाज में भी सद्भाव बना रहेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति है। यदि युवा सही दिशा में सोचे तो समाज बदल सकता है। आज के युवाओं को चाहिए कि वो अफवाहों से बचे, पर्यावरण संरक्षण में भाग ले और मानवता को सबसे ऊपर रखे। युवा यदि शांति का संदेश फैलाएगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और खुशहाल होगी।

मदरसा शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि यही सोच भी विकसित करती है कि एक शिक्षित समाज में सहनशीलता अधिक होती है। विद्यालयों में यदि बच्चों का बचपन से प्रेम, सहयोग और समानता की शिक्षा दी जाए तो समाज में हिंसा कम हो सकती है। यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। कहा भी गया है कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है।

दोस्तों, प्रकृति हमें संतुलन और शांति का संदेश देती है, ना बिना भेदभाव के बहती है। जैसे कि नदी, पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं। लेकिन आज पर्यावरण संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग विश्व अशांति का कारण भी बन सकता है। इसलिए विश्व शांति के लिए पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही

तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि प्रकृति हमें संतुलन और शांति का संदेश देती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी इसी प्रकार से विश्व शांति की

विषय में सोचना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के द्वारा और इस विश्व में शांति को बनाए रखा जा सके, क्योंकि भारत की संस्कृति हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की भावना सिखाती आई है। इसका अर्थ है एक पूरा विश्व एक परिवार। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारी सभ्यता हमेशा प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है, चाहे वो दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर गुरु पर्व। इन त्योहारों पर लोगों को जोड़ने का काम करता है। यदि पूरी दुनिया इस भावना को अपनाए तो शायद सीमाएं केवल नक्शों तक सीमित रह जाए।

0: मत कैसे हुई तेरी? दिमाग ठीक है तेरा?
1: Bro, please try to understand यार.
0: परसों मेरी शादी है. निकल यहाँ से.
1: Bro, please.
0: निकल यहाँ से.
1: Bro, please.

0: हिम्मत कैसे हुई तेरी? दिमाग ठीक है तेरा?
1: ब्रो प्लीज।
2: तो दोस्तों, विश्व शांति केवल नेताओं या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम अपने व्यवहार में प्रेम, सम्मान और धैर्य रखें, धैर्य को शामिल करें, तो समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। याद रखिए, एक मुस्कान भी शांति की शुरुआत हो सकती है। इसी उम्मीद के और सकारात्मक सोच के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसधारा और आज का विषय था विश्व शांति और एकरूपता। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़ती जा रही हूँ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, प्रेम बांटते रहिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

मंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसी के, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

97.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरिंग। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:16:50 यानी कि यह इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। आज आईना में हमारा मौजू है सकाफती तनोव का आलमी दिन यानी कल्चरल डाइवर्सिटी डे। दुनिया मुख्तलिफ कौमों, जबानों, रस्म व रिवाज, तहजीबों और सकाफतों का हसीन गुलदस्ता है। हर कौम की अपनी अलग पहचान, रहन सहन, लिबास, खाने, जबान और रिवायात होती हैं। इन्हीं मुख्तलिफ सकाफतों के एहतराम और इनके दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और हम आहंगी पैदा करने के लिए हर साल 21 मई को यानी आज के दिन सकाफती तनोवों का आलमी दिन यानी के कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये दिन यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस की जानिब से मनाया जाता है। सामीन आपको बताती चलूं कि सकाफती तनोव से मुराद मुख्तलिफ कौमों और माशरों की तहजीब, जबान, अकैद और रिवायात, फनून, रहन सहन और अकदार का एक साथ मौजूद होना है। दुनिया के हर मुल्क और हर इलाके की अपनी एक खास सकाफत होती है। यही तनोव दुनिया को खूबसूरत और दिलचस्प बनाता है। सकाफती तनोव के आलमी दिन को मनाने का मकसद मुख्तलिफ कौमों

सूबे में अमन कायम रखना सिर्फ पुलिस की या फिर फौज की या फिर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत का साथ देना, उनके स्कीमों से जहाँ फैजयाब होते हैं वहाँ हमें उनके बनाए कवानीन और उनके बनाए उसूलों पर हमें अमल पैरा भी होना है। हमें अपने संविधान का एहतराम भी करना है, हमें अपने कानून की अपनी अदलिया की इज्जत भी करनी है। याद रखें कि इज्जत दें तो इज्जत पाएं, मोहब्बत दें तो मोहब्बत पाएं। ये मोहब्बत का रिश्ता बनाए रखें, मुल्क में सूबे में शहर में अमन व सुकून बनाए रखें, इसी में हमारी और आपकी तरक्की की राहें हैं। आइए मिलकर अहद करें कि हम टेररिज्म को अपने मुल्क से यूं तो निकाल फेंकेंगे जैसे कि ये हमने किसी ज़माने पोलियो को निकाल फेंका था, किसी ज़माने में हम कोविड-19 से लड़े थे। हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, हम मुत्तहद हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का ये नारा हमेशा इंशाल्लाह

जी मौसे सामे, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, तेरी आंखों में हमने अपना नाम लिखा देखा, तेरी आंखों में हमने अपने लिए वफा देखी, खुलूस देखी, कई वादे देखे, लेकिन नजरों का क्या है, नजरें तो पलट भी जाती हैं, निगाहों का क्या है, निगाहों का मरकज आज ही मैं हूँ, कल कोई और हो सकता है, इसलिए एतबार ना करें, खुद पर एतबार करें, अपने हौसलों पर एतबार करें, अपने मकासद पर एतबार करें, अपने विजन पर एतबार करें। बेशक मोहब्बत एक लतीफ़ जज्बा है, इससे जज्बे से सरशार हर कोई हर उम्र में होता है, और ये तो एक ख़ास उम्र में ये जज्बा वाकई एक अजीब सी कैफियत से हम दोचार होते हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को ज़रूरी है कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, जो हालात हैं सूबे के, शहर के, उसे समझा जाए। मोहब्बत का पैगाम आंखों आंखों में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर तरक्की के राहों में चलकर हमें आगे बढ़ना है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम पार्क के बेंचों में बैठें या फिर फजूल के एक्समेस करें या फ़ोन पर अपना वक्त ज़ाया करें। हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि आप अपना विज़न बनाए, अपनी मंजिल का तयन करें और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें हम बात करें, उन राहों पर चलें, चाहे वो राहें कितनी ही दुश्वार क्यों ना हो। याद रखें, हुकूमत वक्त हमेशा आपके साथ है। हुकूमत वक्त की कई स्कीमें हैं जो आपको रोज़गार से लेकर घर से लेकर हर तरह की माली मदद देने को तैयार है। बस आप अपना विज़न बदलें, आप अपनी ज़िंदगी के मकासद बदलें और फिर हुकूमत के साथ वक्त से कदम मिलाकर चलें। इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर होगी, यही हमारा नारा है, यही हमारी कोशिश है कि तरक्की हो और तरक्की की ये लहर, तरक्की की रोशनी हर घर तक पहुँचे। लेकिन इस रोशनी को अपने घर तक लाने के लिए हमें भी अपने खिड़की दरवाज़ों को खोलना होगा, अपने बंद दरीचों को खोलना होगा, और इन बंद दरीचों को अगर खोलने के लिए अगर हमें बुज़ुर्गों के तजुर्बों की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि घर में जब बुज़ुर्ग होते हैं ना

तो उनसे किसी भी मामले में आप मशवरा करें, किसी भी हालात में मशवरा करें, तो वो हमें नेक और मुफीद मशवरे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा होता है ना, ज़िंदगी का तजर्बा उन्हें हासिल होता है, कई हवादिस, कई वाक़यात, कई हादसात उनके ज़िंदगी में गुजर चुके होते हैं, और वाक़यात और हादसात जो हमें हमारी ज़िंदगी में गुजरते हैं, जिनसे हम तजुर्बा हासिल करते हैं, और सिर्फ तजुर्बा हासिल कर करके ही हम आगे उनसे बचकर चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज है जुमेरात, और हम हर जुमेरात को बात करते हैं ना बुज़ुर्गों के तजुर्बे पर, से हम किस तरह से बुज़ुर्गों के तजुर्बे से फैज़याब हो सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इंतहाई शबाब पर गर्मी है, ये पता है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि शहर का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, मिजाज बड़ा तेज़ है, इसलिए हम आज बात कर लेते हैं कि गर्मी की तेज़ धूप से हम कैसे बचें, और इसमें हमारे बुज़ुर्गों के तजुर्बे किस तरह से हमारे लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं गर्मी की तेज़ धूप से बचने के तजुर्बे से बुज़ुर्गों के तजुर्बे। गर्मी की तेज़ धूप से बचने के तरीक़े और बुज़ुर्गों के तजुर्बे। भाई चलिए, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, गर्म हवाओं और शदीद लू को लेकर आता है। आजकल मौसम में तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफा होने की वजह से गर्मी पहले से ज़्यादा शदीद महसूस होती है। इस मौसम में ज़रा सी लापरवाही इंसान की सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार अफराद गर्मी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। ऐसे हालात में हमारे बुज़ुर्गों के तजर्बात और पुराने ज़माने के आजमूदा तरीक़े नहायत मुफीद साबित होते हैं। शदीद गर्मी और धूप इंसानी जिस्म पर मनफी असरात डालती हैं। इनमें चंद अहम नुकसानात मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि लू लग जाना। तेज़ गर्म हवाओं में ज़्यादा देर रहने से इंसान को लू लग सकती है, इससे जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात बेहोशी भी हो जाती है। गर्मी में जिस्म से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। इस हालत को डिहाइड्रेशन कहते हैं। ज़्यादा गर्मी में इंसानी जिद जो थक जाते हैं, तबीयत बोझल हो जाती है और काम करने की ताकत कम हो जाती है। तेज़ धूप और पसीने की वजह से जिल्द पर दाने, ख़ारिश और जलन जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। शदीद गर्मी की वजह से दिमाग मुतासिर हो सकता है, जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। ये ख़तरनाक हालत है जिसमें फौरी इलाज ज़रूरी होता है। गर्मी के इतने नुकसानात हैं, जहाँ इतनी शदीद गर्मी है भाई, वहाँ गर्मी से बचने के कुछ उपाय, कुछ एहतियातें भी हैं। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि जिसमें पानी की कमी ना हो। लेमू पानी, ORS, शरबत और नारियल पानी भी बहुत मुफीद होते हैं। दोपहर के वक्त, ख़ास करके हमारा 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे का वक्त, दोपहर के वक्त बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वजह वक्त धूप सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, और अगर निकलना भी पड़े तो पानी का बोतल और छतरी साथ रखें। सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े गर्मी में आराम देते हैं, क्योंकि ये पसीना जज्ब करते हैं। फूल, सब्जियाँ, दही, लस्सी, तरबूज, खरबूजा और खीरे जैसी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। बाहर जाते वक्त टोपी, दुपट्टा या छतरी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि धूप बरारास्त सर पर ना पड़े। खिड़कियों पर पर्दे डालने, पानी का छिड़काव करने और हवादार माहौल रखने से गर्मी कम महसूस होती है। ये सब एहतियात तो ज़रूर करें, लेकिन घर में अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो उनसे बुज़ुर्गों से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें गर्मी से बचना है। हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदगी की तवील तजर्बात रखते हैं। पुराने ज़माने में ना AC थे और ना ही जदीद सहूलतें, इसके बावजूद लोग गर्मी का मुकाबला कुदरती तरीक़ों से करते थे। उनके तजर्बात आज भी हमारे लिए नहायत मुफीदमंद हैं, जैसे कि मिट्टी के घड़े का पानी पीना। बुज़ुर्ग फ्रिज के बजाय मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, यह पानी कुदरती तौर पर ठंडा और सेहत के लिए मुफीद होता है। पुराने ज़माने में लोग गर्मी से बचने के लिए लस्सी, सत्तू और बेल का शरबत पीते थे, ये जिस्म को ताकत और ठंडक देते हैं। बुज़ुर्ग घरों में किसी भी या गीली टाट के पर्दे लगाते थे, खस या गीली टाट के पर्दे लगाते थे, जिनमें पानी छिड़काव किया जाता था, इससे ठंडी हवा अंदर आती थी। पुराने लोग दोपहर के

अगली पेशकश सुनिए आप हरी हरन की आवाज में ये खूबसूरत गजल हुस्न को चांद कहते हैं। आपको पता है कि आज है जुमेरात और हम लेकर आते हैं गजल उसने छेड़ी। गजल उसने छेड़ी की दूसरी पेशकश हुस्न को चांद कहते हैं हरी हरन की मधुर आवाज में।

आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल तू खफा है। भई आप बिल्कुल खफा ना रहिए, हम हमेशा आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे, क्योंकि तेरी धड़कन से दिल का रिश्ता है मेरा, तू ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरा। ये मोहब्बत उससे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। जी हाँ, एक ऐसा ही गहरा रिश्ता आपके साथ है, जिस यही रिश्ते की कशिश खींच कर ले आती है हमें आपके पास स्टूडियो तक, और हम आपके लिए लेकर आते हैं खूबसूरत नगमों की बारात, कुछ मालूमात, कुछ अच्छी बातें, और चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह के प्रोग्राम प्रेजेंट करें। हम चाहते हैं कि आपके मशवरे हमें मिलें, जिसके लिए लाजमी है कि आप हमें ख़त लिखें, मेल करें और हमें फ़ोन करें। चलिए, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम। आप अपनी मेज़बान सूफिया शीरी को इजाज़त दीजिए, लेकिन अब आपका साथ निभाएंगी प्रतिज्ञा घोष। चलिए, मैं उनके साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सूफिया शीरी को।

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों आप सुन रहे सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है। दोस्तों दुनिया रंगों से खूबसूरत लगती है, और ये रंग सिर्फ प्रकृति में ही नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, खान पान, पहनावे, संगीत और परंपराओं में भी दिखाई देते हैं। हर देश, हर समाज और हर समुदाय को अपनी अलग पहचान होती है, और यही विविधता हमारी दुनिया को खास बनाती है। इसी सोच को सम्मान देने के लिए हर साल 21 मई को मनाया जाता है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे इस दिवस का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और कैसे ये समाज को मजबूत।

उत्पन्न आती है। दोस्तों, अलग अलग भाषा, परंपरा, कला, संगीत, नृत्य, रहन सहन और विचार एक साथ मौजूद होते हैं तो उसे कहा जाता है सांस्कृतिक विविधता। भारत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, पहनावा, भोजन और त्यौहार है, फिर भी हम सब एक हैं। कहीं भारत नाट्यम है तो कहीं कथक, कहीं बीहू तो कहीं गरबा, कहीं इडली डोसा तो कहीं लिट्टी चोखा। यही विविधता हमें सिखाती है कि अलग होना गलत नहीं बल्कि खूबसूरत है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मानना है कि सांस्कृतिक विविधता मानवता की साझा धरोहर है। जिस तरह जैव विविधता प्रकृति के लिए जरूरी है, उसी तरह सांस्कृतिक विविधता समाज के लिए जरूरी है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इसके पीछे उद्देश्य था दुनिया के अलग अलग समुदायों के बीच आपसी सम्मान बढ़ाना, संवाद को मजबूत करना और शांति तथा विकास को बढ़ावा देना। दरअसल वर्ष 2001 में यूनेस्को ने इसे अपनाया था। इसके बाद यह महसूस किया गया कि दुनिया में बढ़ती दूरियों, संघर्षों और भेदभाव को कम करने के लिए संस्कृतियों के बीच संवाद बेहद जरूरी है और तभी से हर साल 21 मई को यह दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों, जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं तो मन में सम्मान पैदा होता है और जहाँ सम्मान होता है वहाँ भेदभाव कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ अलग अलग संस्कृतियों का होना ही काफ़ी नहीं है, उनके बीच संवाद होना, क्योंकि बातचीत ही गलत फहमियों को दूर करती है। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया को करीब तो ला दिया है, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरों की संस्कृति पर टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे में संवाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम किसी की भाषा नहीं जानते तो कम से कम उसका सम्मान तो कर सकते हैं। अगर किसी का पहनावा हमसे अलग है तो उसे अजीब समझने के बजाय उसकी परंपरा जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही सोच समाज को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, भारत को अक्सर कहा जाता है विविधता में एकता। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हर त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या फिर गुरु पर्व, हर त्यौहार लोगों को जोड़ने का काम करता है। भारतीय संविधान भी सभी संस्कृतियों और भाषाओं को सम्मान देने की बात करता है। हमारी फिल्मों, संगीत और साहित्य में भी यह विविधता साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती है। बहुत लोग सोचते हैं कि संस्कृति सिर्फ कला या त्योहारों तक सीमित है, लेकिन सच यह है कि संस्कृति विकास से भी जुड़ी होती है। कैसे, तो चलिए बताती हूँ। जब किसी समुदाय की कला, हस्तशिल्प, संगीत या परंपराओं को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। जैसे लोक कलाकारों को मंच मिलता है, हस्तशिल्प को बाजार मिलता है और पर्यटन बढ़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यानी संस्कृति सिर्फ पहचान नहीं देती बल्कि विकास का माध्यम भी बनती है। तो दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी दुनिया से बहुत तेजी से जुड़ रही है। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे अपनी संस्कृति को समझें, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें और सकारात्मक संवाद को आगे बढ़ाएं। अगर युवा पीढ़ी अपनी लोक भाषा, लोक संगीत और परंपराओं से जुड़ी रहेगी तो हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी। साथ ही नई चीज़ों को अपनाने के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी जरूरी है। तो दोस्तों, यह दिवस हमें सिखाता है कि विविधता कमजोरी नहीं ताकत है। अलग अलग संस्कृतियां दुनिया को समृद्ध बनाती है। संवाद हर समस्या को बेहतर समाधान देता है।
जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो समाज में शांति बढ़ती है।

सकती है और यही शांति विकास का रास्ता तैयार करती है। आज जरूरत है कि हम भेदभाव कम करें, सम्मान बढ़ाएं और दुनिया को एक परिवार की तरह देखें। तो दोस्तों, अपने आसपास मौजूद हर संस्कृति का सम्मान कीजिए, नई भाषाएं सीखिए, लोक कला को बढ़ावा दीजिए और सबसे ज़रूरी, लोगों से संवाद बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल जुड़ते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम चर्चा है में हमने जाना वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के महत्व के बारे में। संस्कृति हमें पहचान देती है, संवाद हमें जोड़ता है और यही जुड़ाव विकास की राह बनाता है। आइए हम सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और हर आवाज़ को सुना जाए। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक।

तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम अब आगे बढ़ते हैं पहल की ओर। किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी आधुनिक इमारतों या तकनीक से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति, इतिहास और विरासत से भी होती है। पुरानी मूर्तियां, पांडुलिपियां, चित्रकला, सिक्के, शिलालेख और ऐतिहासिक वस्तुएं, ये सिर्फ चीजें नहीं है बल्कि हमारे अतीत की जीवित कहानियां हैं। लेकिन कई बार लालच और तस्करी की वजह से ऐसी अनमोल धरोहरें देश से बाहर पहुंच जाती है। इसी धरोहरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बनाया है प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम 1972। तो दोस्तों पहल में आज हम बातें करेंगे प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम 1972 के विषय में। हर देश की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है। भारत की पहचान उसकी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, मंदिरों, कला और इतिहास से जुड़ी है। हमारे यहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं, प्राचीन मूर्तियां, मुगल कालीन चित्रकला और पुराने सिक्के और कई दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। ये सिर्फ संग्रहालय की चीजें नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धरोहर है। इन वस्तुओं से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी कला कैसी थी, उनका ज्ञान और जीवन शैली कैसी थी। लेकिन समय के साथ इन धरोहरों की चोरी और अवैध तस्करी बढ़ने लगी। इसी खतरे को देखते हुए इस कानून की जरूरत महसूस हुई। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था देश की प्राचीन वस्तुओं की सुरक्षा करना, कला निधियों की अवैध खरीद बिक्री रोकना और ऐतिहासिक धरोहरों को विदेशों में तस्करी से बचाना। यह कानून वर्ष 1976 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत सरकार को अधिकार मिला कि वह प्राचीन वस्तुओं का पंजीकरण कर सके, निर्यात को नियंत्रित कर सके और अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई कर सके। दोस्तों ये कानून से वस्तुओं की सुरक्षा नहीं करता बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखने का काम करता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर एंटिक्विटी यानी प्राचीन वस्तुएं किसे कहा जाता है। इस कानून के अनुसार ऐसी वस्तुएं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या कलात्मक महत्व रखती हो और काफी पुरानी हो उसे प्राचीन वस्तुएं कहा जाता है। इनमें शामिल हो सकती है प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, पांडुलिपियां, चित्रकला, शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज, धार्मिक कलाकृतियां। सामान्य रूप से 100 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं को प्राचीन माना जाता है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों में अलग मानक भी हो सकते हैं। दोस्तों आर्ट ट्रेजर यानी कि कला निधि ऐसी कलाकृतियां होती है जिनका कलात्मक महत्व, ऐतिहासिक महत्व या फिर सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे कि प्रसिद्ध चित्रकला, दुर्लभ मूर्तियां, पारंपरिक कला के विशेष नमूने। सरकार ऐसी वस्तुओं को राष्ट्रीय महत्व की धरोहर मान सकती है। इनके बिना अनुमति से खरीदना, बेचना या विदेश भेजना कानूनन अपराध हो सकता है। इस अधिनियम के तहत कई प्राचीन वस्तुओं का पंजीकरण जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी ऐतिहासिक वस्तु है जो उसे संबंधित विभाग में उसकी जानकारी देनी पड़ सकती है, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु सुरक्षित रहे, उसकी पहचान बनी रहे और उसकी चोरी या अवैध बिक्री रोकी जा सके। इसके अलावा प्राचीन वस्तुओं के व्यापार के लिए लाइसेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना नियमों का पालन किए इन वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकता। भारत से कई दुर्लभ मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं चोरी होकर विदेशों तक पहुंच चुकी। तस्कर अक्सर मंदिरों, पुरानी इमारतों और निजी संग्रहों को निशाना बनाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि सरकार और कई एजेंसियां मिलकर अब इन धरोहरों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। बीते वर्षों में भारत कई चोरी हुई प्राचीन मूर्तियां विदेशों से वापस लाने में सफल भी हुआ। यह कानून ऐसी तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह संस्था ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल, पुरातात्विक शोध और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा का कार्य करती है। ASI कई प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण और रिकॉर्ड रखने में भी मदद करता है। दोस्तों हमारी विरासत जितनी

जितनी सुरक्षित रहेगी आने वाली पीढ़ियां उतने ही अपने इतिहास को समझ सकेंगी। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करें। अगर कहीं ऐसे ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी, क्षति या अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए। पुरानी इमारतों और स्मारकों पर नाम लिखना, नुकसान पहुंचाना या गंदगी फैलाना भी गलत है। याद रखिए, विरासत सिर्फ अतीत नहीं होती बल्कि भविष्य की पहचान भी होती है। तो दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक धरोहर दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखी जाती है। हमारा इतिहास जितना समृद्ध है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसे सुरक्षित रखने की भी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम पहल में हमने जाना द एंटिक्स एंड द आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 के बारे में। हमने समझा कि कैसे ये कानून हमारी प्राचीन वस्तुओं और कला निधियों की सुरक्षा करता है और क्यों सांस्कृतिक विरासत को बचाना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास, कला और विरासत का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, आज की पहल यहीं तक। तो दोस्तों, घड़ी की सुई बता रही कि सुरभि कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चला है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, जल्द मुलाकात होगी इसी आशा के साथ।

0: Please stay tuned for the news from Delhi in a short while from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री

0: गुप्ता ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today jointly inaugurated the Indian War Memorial at Imjingak Park in Seoul. Constructed as part of the commemorative events marking the 75th anniversary of the Korean War, the memorial stands as a tribute to the courage, sacrifice and humanitarian service rendered by the 60 para field ambulance of the Indian Army and the custodian force of India during the war. Highlighting the transformative potential of artificial intelligence in reshaping healthcare systems, Union Health Minister Mr. Jagat Prakash Nadda has said, while AI presents immense opportunities for advancing health

meditate is all the world has even seen lately.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की,

0: जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी।
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी।
0: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते

0: वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार।

0: निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश।

0: भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: party. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ,

0: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम, खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेचते थे, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, क्या मिलेगा काट

0: of Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने

0: आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी

0: शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव

0: सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे मीडियम वेव 297.6 meters अर्थात 1008 kHz। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এশরাজ পরিবেশন করবেন অর্ক জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাগ পতদীপ। শিল্পীকে তবলায় সঙ্গত করেছেন সঞ্জিত মুখোপাধ্যায়।

0: मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement,

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 5:21 और 15 सेकेंड। आप सुन रहे कार्यक्रम उर्वशी अपनी दोस्त प्रीति के साथ। उर्वशी कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है उड़ान।

कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया था और उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। ये केवल एक राजनेता ही नहीं थी बल्कि भारतीय नारी शक्ति की सशक्त प्रतीक भी थी। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ था और उनका बचपन का नाम था स्वरूप कुमारी नेहरू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित की। वे प्रसिद्ध नेहरू परिवार से थी। उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू और भाई थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऐसे वातावरण में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गई। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गई। विजय लक्ष्मी पंडित का जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

में आज बात हो रही है विजयलक्ष्मी पंडित की। विजयलक्ष्मी पंडित ने केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारत की पहले महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उस समय महिलाओं का राजनीति में आना ही बड़ी बात माना जाता था, लेकिन विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी योग्यता से सबको प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें कई देशों में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। उन्होंने सोवियत संघ, अमेरिका, मेक्सिको, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह रही कि वर्ष 1953 में वे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था। विश्व मंच पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, शांति और लोकतंत्र की आवाज को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी में आज का सेगमेंट है उड़ान, और उड़ान में आज बात हो रही है विजय लक्ष्मी पंडित की। इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, जो ओजस्वी वक्ता भी थी और उनके विचारों में स्पष्टता दिखाई देती थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर भी विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति के बिना संभव है ही नहीं।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम उर्वशी में सुन रहे हैं उड़ान और उड़ान में आज बात हो रही है विजय लक्ष्मी पंडित की। उनका जीवन संघर्षों से भी भरा रहा ऐसा नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके पति रंजीत पंडित को जेल भेजा गया था जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और बाद में उनका निधन हो गया। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद विजय लक्ष्मी पंडित ने कभी हार नहीं मानी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और बात हो रही है विजयलक्ष्मी पंडित की। विजयलक्ष्मी पंडित केवल एक नेता नहीं थी बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों की दूत भी थी। विदेशों में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपराओं को गर्व के साथ प्रस्तुत किया। उनकी सादगी, आत्मविश्वास और गरिमामय व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था

होप ऑफ हैप्पीनेस। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं और नेहरू परिवार की अनेक यादों को साझा किया है।

वक्त हो चला है 5:50 और 12 सेकंड बात हो रही है विजय लक्ष्मी पंडित की, जिनका निधन 1 दिसंबर 1990 को हुआ और उनकी प्रेरणादायक जीवन आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा

शक्ति, शिक्षा और राष्ट्र प्रेम के बल पर कोई भी व्यक्ति इतिहास रच सकता है। अब जाते जाते मैं आपको सुनाऊंगी एक खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली

0: हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month.

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चले 6:10 और 22 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक बेहद सुगंधित आत्मीय और भारतीय जीवन से गहराई से जुड़ा विषय, भारत में चाय और संस्कृति। भारत में चाय केवल एक पेय नहीं है बल्कि यह भावनाओं, रिश्तों, परंपराओं और अपनत्व का प्रतीक है। सुबह की शुरुआत हो, मेहमानों का स्वागत हो, दोस्तों की महफिल हो,

दफ्तर की थकान हो या बारिश की फुहारे, हर पल में चाय कहीं न कहीं मौजूद रहती ही है। कहा भी जाता है कि भारत में बातचीत की शुरुआत अक्सर एक प्याली चाय से होती है। चाय का इतिहास भारत में बहुत पुराना नहीं माना जाता, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय भारत में चाय की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला। विशेष रूप से असम और दार्जिलिंग के चाय बागान विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में शामिल है। अगर हम भारत की विविधता को देखें तो हर क्षेत्र की चाय का स्वाद और तरीका अलग दिखाई देता है। कश्मीर की कहवा, गुजरात की मसाला चाय, बंगाल की मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय, महाराष्ट्र की कटिंग चाय, दक्षिण भारत की फिल्टर चाय, हर जगह चाय का अपना अलग रंग और अंदाज है।

आसाम की चाय अपनी मजबूत खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है, वहीं दार्जिलिंग की चाय को चाय की शैंपेन कहा जाता है। इसकी हल्की सुगंध और स्वाद विदेशों तक प्रसिद्ध है। भारत में चाय केवल घरों तक सीमित नहीं है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, छोटे कस्बे, बड़े शहर, हर जगह चाय लोगों को जोड़ने का काम करती है। सुबह सुबह चाय गरम की आवाज भारतीय जीवन का जाना पहचाना दृश्य है। कई लोगों के लिए चाय ऊर्जा का स्रोत है, तो कई लोगों के लिए ये तनाव कम करने का माध्यम है।

ऑफिस में चाय ब्रेक केवल चाय पीने का समय नहीं होता, बल्कि यह संवाद, विचार विमर्श और आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी बन जाता है। भारतीय समाज में मेहमान वाजी का विशेष महत्व है। घर में अतिथि आए और उसे चाय न पूछी जाए, ऐसा बहुत कम होता है। एक कप चाय लीजिए, यह वाक्य अपने आप में अपनापन और सम्मान व्यक्त करता है। ग्रामीण भारत में भी चाय सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। गांव की चौपालों पर लोग चाय के साथ खेती, मौसम, राजनीति और समाज की बातें करते हैं। वहीं शहरों में कैफे संस्कृति बड़ी है, लेकिन सड़क किनारे की छोटी चाय की दुकानें आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाती हैं।

भारतीय फिल्मों और साहित्य में भी चाय का विशेष स्थान है। अनेक गीतों, कविताओं और कहानियों में चाय को दोस्ती, प्रेम और यादों से जोड़ा गया है।

चाय को स्वाद से भी जोड़कर देखने लगे हैं। लेकिन चाय केवल स्वाद और ताजगी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक, किसान और छोटे विक्रेता इस उद्योग की रीढ़ हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में भी चाय उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।

बोर्ड इंडिया भारतीय चाय को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भारतीय चाय दुनिया के अनेक देशों में निर्यात की जाती है। अगर संस्कृति की बात करें तो चाय ने लोगों के बीच दूरी कम करने का काम किया है। राजनीति की चर्चा हो, साहित्यिक गोष्ठी हो, परिवार की बैठक हो या दोस्तों की मुलाकात, चाय हर जगह मौजूद रहती है। कई बार एक कप चाय टूटे रिश्तों को जोड़ने का माध्यम भी बन जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि चाय केवल पेय नहीं, संवाद का सेतु है। भारत की विविधता में एकता की भावना को भी चाय कहीं ना कहीं मजबूत करती है। भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, परंतु चाय के प्रति प्रेम लगभग हर भारतीय में समान दिखाई देता है। आज सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली के दौर में भी चाय अपनी पहचान बनाए हुए है। चाय पर चर्चा जैसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं। ये दर्शाता है कि चाय केवल आदत नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक जीवन की संस्कृति बन चुकी है। एक छोटी सी चाय की प्याली अपने भीतर कितनी बड़ी दुनिया समेटे हुए है। अपनापन, मेहनत, परंपरा, संवाद और संस्कृति की दुनिया। जहां चाय है वहां बातचीत है, जहां बातचीत है वहां रिश्तों की मिठास है।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। आज की हिंदी वार्ता कार्यक्रम का विषय था भारत में चाय और संस्कृति। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन

सकते हैं। वक्त हो चला है 6:31 और 8 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन अपने दोस्त प्रीति के साथ। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाएं शान की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

वक्त तो चला है 6:41 नहीं 42 हो चुके हैं। अब एक मुख्य समाज जानकारी। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को पूर्वाह्न 11:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC Das सहायक निदेशक डाक सेवा अर्थात ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36CR Avenue कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और यह डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpg@gmail.com में या फिर pg@wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा अर्थात ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332212612 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदेश से संबंधित विविध मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

वक्त तो चला है 6:55 और जाते जाते एक खूबसूरत सा गीत आपके सामने पेश किए जा रही हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की

0: कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 7:23:40। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण अपनी दोस्त प्रीति के साथ। दर्पण कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं एक नज़र

एक नजर में आज सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में। हर वर्ष 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में शांति, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है। आतंकवाद केवल किसी देश या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। यह निर्दोष लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है।

तथा विकास और शांति के मार्ग में बाधा बनता है। भारत ने कई बार आतंकवाद की पीड़ा को झेला है। हमारे वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और नागरिकों ने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती के बावजूद भारत ने हमेशा एकता, साहस और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती से बनाए रखा है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संवाद, सहिष्णुता और आपसी समझ ही समाज को आगे बढ़ाने का सही मार्ग है। आज के युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया और तकनीक के इस दौर में अफवाहों, नफरत और भ्रामक विचारों से बचना अत्यंत आवश्यक है। हमें ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए जो समाज में वैमनस्य फैलाए। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई जाती है, ताकि लोग देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जागरूक रहें। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि शांति, भाईचारे और मानवता के मूल्यों को सदैव मजबूत बनाए रखें। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर ही हम सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

0: ओर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत में चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि भावनाओं, अपनत्व और संवाद का माध्यम है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, दफ्तर की थकान हो या बरसात की शाम, एक प्याली चाय हर पल को खास बना देती है। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा की चाय अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय को तो चाय का शैंपेन भी कहा जाता है। चाय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों लोग चाय उद्योग से जुड़े हुए हैं। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की मेहनत ही है जो हर घर तक स्वाद और ताजगी पहुंचाती है। चाय केवल शरीर को ताजगी नहीं देती बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोलती है। आइए चाय पीजिए। यह वाक्य भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार का प्रतीक बन चुका है। कई बड़े फैसले, कई नई शुरुआत और अनगिनत यादें चाय की प्याली के साथ जुड़ी होती हैं। आजकल अलग अलग प्रकार की चाय भी लोकप्रिय हो रही है, जैसे ग्रीन टी, हर्बल टी, लेमन टी और मसाला चाय। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अब चाय को स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य से भी जोड़कर देख रहे हैं। सीमित मात्रा में चाय का सेवन मन को तरोताजा करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि साधारण सी दिखने वाली चाय कितने लोगों की मेहनत, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी हुई है। यह दिवस चाय उत्पादकों और श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने का अवसर भी है। इस अवसर पर हम अपने देश की समृद्ध चाय परंपरा को नमन करते हैं और एक प्याली चाय के साथ रिश्तों की गर्माहट को और मजबूत बनाने का प्रण लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे एक नजर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

दर्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत। खेल जगत में आज बात होगी बैडमिंटन की। मलेशिया मास्टर्स 2026 में भारत को झटका लगा क्योंकि भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय पहले दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने उम्मीद बनाए रखी। वहीं स्लोवेनिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में नागपुर की रितिका ठाकुर और यूपी की सोनाली सिंह की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई। उन्होंने कई ऊंची रैंकिंग वाली जोड़ियों को भी हराया। बात करें सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2026 में रायपुर के ईशान भटनागर और उनकी जोड़ीदार श्रुति मिश्रा ने भी मिश्रित युगल का गोल्ड मेडल जीता। और मोतीराम कप बैडमिंटन में चेंबूर जिमखाना और बॉम्बे जिमखाना की मजबूत शुरुआत। मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित मोतीराम कप प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने अपनी शुरुआती मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। महाराष्ट्र U19 स्टेट बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता के पहले दिन मुंबई के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई आसान जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुड्डा ने सरकारी अस्पतालों में लगभग 60 लीटर दूध दान किया जिसमें नवजात बच्चों की मदद हो सके और उसके इस कदम की देश भर में सराहना।

Ahoy. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 21 पॉइंट की जगह नया 15 पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। कुछ खिलाड़ियों ने इसका समर्थन किया जबकि कई खिलाड़ियों ने चिंता जताई। सत्रह से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी। लगभग 17 वर्षों बाद भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

0: बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन केवल एक खेल नहीं बल्कि तेज सोच, फुर्ती और मानसिक संतुलन का अद्भुत संगम है। इस खेल में खिलाड़ी को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से नई पहचान बनाई। भारत में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। लेकिन किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके कोच और मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका होती है। एक अच्छा कोच खिलाड़ी को केवल तकनीक ही नहीं सिखाता बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। बैडमिंटन में रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कब स्मैश लगाना है, कब ड्रॉप खेलना है और कब धैर्य बनाए रखना है, यह सब खिलाड़ी को निरंतर अभ्यास से सीखना पड़ता है। विश्व स्तर तक कई कोचों ने खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी कारण आज बैडमिंटन पहले से अधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यदि हम सफल खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी दिनचर्या अत्यंत कठिन होती है। सुबह की फिटनेस ट्रेनिंग, कोर्ट प्रैक्टिस, डाइट कंट्रोल, मानसिक तैयारी, ये सब उनके जीवन का हिस्सा होता है। एक खिलाड़ी को हार से भी सीखना आना चाहिए। कई बार खिलाड़ी शुरुआती दौर में हार जाते हैं, लेकिन वही हार उन्हें भविष्य में मजबूत बनाती है। बैडमिंटन में गति के साथ साथ संयम की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह खेल युवाओं को अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाता है। खेल हमें जितना ही नहीं सिखाता, बल्कि टीम भावना, सम्मान और संघर्ष का महत्व भी सिखाता है। जब कोई खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतता है तो पूरा देश गर्व महसूस करता है। युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर खेलों की ओर बढ़ती है। आइए हम बताएं आपको भारतीय बैडमिंटन जगत की कैसी ही खिलाड़ी की, जिन्होंने पुरुष युगल प्रतियोगिताओं में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। नाम है सानवी थॉमस। केरल की धरती से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सानवी थॉमस ने अपनी शानदार खेल, मेहनत और अनुशासन से युवाओं को प्रेरित किया। थॉमस का जन्म 21 मई 1980 को केरल के अलपुजा जिले में हुआ। बचपन से ही उन्हें बैडमिंटन में गहरी रुचि थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने खेल को निखारा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। सानवी थॉमस मुख्य रूप से पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल्स के खिलाड़ी रहे। उनकी जोड़ी केटी रुपेश कुमार के साथ काफी प्रसिद्ध हुई। दोनों खिलाड़ियों ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।

0: ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल कार्यक्रम दर्पण में। अभी वक्त है खेल जगत का और खेल जगत में अभी बात हो रही है बैडमिंटन की और बैडमिंटन में आज के प्लेयर हैं सनावी थॉमस जो कि युगल मुकाबले बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। उनके अनुसार यहाँ केवल व्यक्तिगत प्रतिभा ही नहीं बल्कि तालमेल समझ और तेज रणनीति की भी आवश्यकता होती है। सनावी थॉमस और उनके साथी ने कोर्ट पर शानदार तालमेल का प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से वे लंबे समय तक भारत की शीर्ष डबल जोड़ियों में शामिल रहे। सनावी थॉमस ने 2006 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया। इसके बाद 2010 दक्षिण एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 2006 और 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF रैंकिंग में भी उन्होंने ऊंचा स्थान हासिल किया। पुरुष युगल में उनकी विश्व रैंकिंग 13 तक पहुंची जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे कठिन अभ्यास और अनुशासित जीवन शैली होता है। सनावी थॉमस ने भी वर्षों तक लगातार मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। उनके खेल में तेज स्मैश शानदार नेट प्ले और बेहतरीन कोर्ट कवरेज देखने को मिलता था। सनावी थॉमस ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत को जीत दिलाई। 2009 न्यूजीलैंड ओपन और बिटबर्गर ओपन जैसे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की। उनकी जोड़ी को भारतीय बैडमिंटन इतिहास की सफल डबल्स जोड़ियों में गिना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्होंने भारतीय बैडमिंटन में डबल्स खेल को एक नई पहचान दी है। आज भारत में बैडमिंटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। नई पीढ़ी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सनावी थॉमस जैसे खिलाड़ियों का संघर्ष और योगदान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खेल हमें केवल जीतना नहीं सिखाते बल्कि अनुशासन धैर्य और टीम भावना का महत्व भी बताते हैं। सनावी थॉमस की यात्रा यह साबित करती है कि यदि मेहनत और लगन सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। आज भी युवा खिलाड़ी उनके खेल और अनुभव से प्रेरणा लेते हैं। उनकी उपलब्धियां भारतीय खेल जगत में हमेशा याद की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत।

आइए जाते जाते हम आपको सुनाते जाते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सागर से इस गीत को। इसी के साथ प्रीति को दीजिए आज्ञा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

0: মন কি বাত, জনগণের কথা, সকলের নিজের কথা, কিছু লড়াইয়ের কাহিনী, কিছু সাফল্যের আখ্যান, অব্যক্ত ঐতিহ্যের গাথা, নতুন ভারতবর্ষের আশা, মাসের শেষ রবিবারের অপেক্ষায় থাকা, মলয় পর্বতের কোল থেকে বিন্ধ্যাচলের পাদদেশ পর্যন্ত, ব্রহ্মপুত্র নদের তীর থেকে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা, মন কি বাত। মন কি বাত অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আকাশবাণী কলকাতার সবকটি প্রচার তরঙ্গ সহ প্রসার ভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ওয়েভসে 31 মে ঠিক সকাল 11টায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূল অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের ঠিক পরেই মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বেতার ভাষণের বাংলা রূপান্তর শোনা যাবে আকাশবাণী কলকাতার গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা, মৈত্রী, FM রেইনবো, FM গোল্ড, বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে ও DTH বাংলা পরিষেবায়। এবং পুনঃসম্প্রচার শোনা যাবে সেই দিন রাত 8টায় আকাশবাণীর গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা, মৈত্রী, FM রেইনবো, FM গোল্ড, বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে এবং DTH বাংলা পরিষেবায়। এছাড়াও আকাশবাণী ও দূরদর্শনের ইউটিউব চ্যানেলে এবং প্রসার ভারতীর নিউজ অন AIR অ্যাপ সহ প্রসার ভারতীর OTT প্ল্যাটফর্ম ওয়েভসে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে। আরো একবার মনে করিয়ে দিই, মন কি বাত অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে 31 মে রবিবার ঠিক সকাল 11টায়।
1: পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা একটু পরেই।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को

0: को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत।

0: स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया।

0: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में 1 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said,

0: countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल तो बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्ट एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का, अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व तो क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल ये स्नो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत सारे कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग

0: उसको बोलते हैं कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें चार कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये चार कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया। लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है, एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारे जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है। तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है तो हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
0: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड, इस ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा।

0: लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो आईएमडी की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे। मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आपको भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, कभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मॉनसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इस टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का आईएमडी फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का फुट पार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में खासतौर पे हीट

0: वेव की परिस्थितियों में अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
1: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े। एंड पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए। क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
0: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
1: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
0: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: এই পুনর্নির্বাচনে ছজন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান অবশ্য শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর থেকে। উল্লেখ্য, গত 29 এপ্রিল রাজ্যের দ্বিতীয় দফা বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রের বেশ কিছু বুথে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এরপরই পুনর্নির্বাচনের এই সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। আগামী 24 মে ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে সকাল 8টা থেকে ভোট গণনা হবে। আরজিকর হাসপাতালে তরুণী পিজিডি চিকিৎসকের ধর্ষণ হত্যাকাণ্ড ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট আজ 3 সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল এসআইটি গঠন করেছে। 2 বিচারপতি শম্পা সরকার ও তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ জানিয়েছেন, সিবিআই এর পূর্বাঞ্চলীয় জোনের যুগ্ম অধিকর্তা এই বিশেষ তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন। 2024 সালের 8ই অগস্ট রাতে খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন চিকিৎসকের দেহ সৎকার পর্যন্ত সময়কালে কী কী ঘটেছিল এই দল পুনরায় তা তদন্ত করে দেখবে। এর জন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই। পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসেবেই কাজ করবে, কোনো দলের সরকার হিসেবে নয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সৌমিক ভট্টাচার্য আজ নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, এই সরকার শুধুমাত্র ঘোষণা সর্বস্ব এবং খেলা মেলার সরকার হয়ে থাকবে না। ইন্টার কাশিকে 2-1 গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার ISL ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। 22 বছর পর সর্বভারতীয় ফুটবল লীগ খেতাব জয় করল ইস্টবেঙ্গল। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ ম্যাচের 14 মিনিটে আলফ্রেড প্লানাসের গোলে ইন্টার কাশি এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধে তারা 1-0 গোলে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরে লাল হলুদ। 49 মিনিটে ইউসেফ এজেজারি খেলায় সমতা ফেরান। 72 মিনিটে মোহাম্মদ রশিদ জয়সূচক গোলটি করেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। ইতালি সহ 5 দেশ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। মুখ্য সমাচার। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की है। भारत और मिस्र ने आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत की पुष्टि की। एक रिपोर्ट।
3: दोनों पक्षों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले और पिछले वर्ष नवम्बर में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी

0: घटना की कड़ी निंदा की गई। दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों देशों ने निरंतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, न्यायिक सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सूचना साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कांगो और युगांडा में 21 मई तक इबोला संक्रमण के दुर्लभ बंडी बोगियो स्ट्रेन से जुड़े कुल 650 संदिग्ध मामले मिले हैं। संक्रमण से 144 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए कहा कि स्थिति अभी महामारी के स्तर पर नहीं है। लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला किया गया। शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों की नई तारीखें आपसी परामर्श से तय की जाएंगी और उचित समय पर उचित की जाएंगी। भारत ने अफ्रीका के लोगों और सरकारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। WHO ने कहा है कि इबोला के इस विशेष स्ट्रेन के खिलाफ टीका तैयार होने में 9 महीने तक का समय लग सकता है। WHO के सलाहकार डॉक्टर वासी मूर्ति ने कहा कि इससे निपटने के लिए 2 संभावित टीके विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका क्लिनिकल परीक्षण बाकी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने और दमन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार को लिखे एक पत्र में मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को उत्पीड़न, धार्मिक अनुष्ठानों पर गैर कानूनी प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारी, हिंसा और प्रशासनिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। एमनेस्टी ने प्रांतीय सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और कानून के समक्ष समानता सहित समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले में आज अलग अलग कोयला खदान दुर्घटनाओं में 2 खनिकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। पहली घटना ओखरवाल कोयला खदान में हुई, जबकि दूसरी घटना चपरमश्ती क्षेत्र में घटी। राहत और बचाव दलों तथा स्थानीय लोगों ने खदान में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर करीब से कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ब्रिटेन ने खाड़ी की 6 देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मिलकर बने खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ हुए इस समझौते से ब्रिटिश निर्यात पर लगभग 58 करोड़ पाउंड के वार्षिक शुल्क में कमी आने की उम्मीद है। GCC समझौता ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार का तीसरा बड़ा व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत और दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे समझौते हो चुके

तीन भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी, पाल पुनुरी संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामिरिता शेर्पा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। वहीं नेपाल की लाग्पा शेर्पा रिकॉर्ड 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के सिलसिले में दुबई स्थित इंडियन पीपल्स फोरम के सदस्यों ने दुबई फ्रेम में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर चर्चा हुई और साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एकता और कल्याण का संदेश दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा

बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।